अली बाबा में खुश बड़ा मुर्गी लालम खान बाबा सुख कहाँ कहाँ कहाँ कहाँ जाइए मोला फोटे नमाज़ अब दूसरा डाल रहे हैं।